0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू। नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02 9063 1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच वी आईएमई एडवाइजर।
2: ਫੁਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
3: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
4: जुगाड़ नहीं ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
4: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। आई एम ई एडवाइजर।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानूं हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस। सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: नीचे थी आके पक्का भी हो गया। की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमीग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा या स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमीग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
4: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हाजी लिसनर्स।

ट्रैवलर्स रेंज रोवर, हांजी 1674, ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो हांजी।

0: ਕੈਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
1: सिर्फ फिल्मी नहीं, ए है पंजाब दी सब तो वड्डी चोरी, द ग्रेट पंजाब रॉबरी।
0: जदो एक जोकर तख्त ते बंद है तो राजा नहीं बंदा, वो पूरे राज नू सर्कस मना लैंदा है।
1: स्टारिंग राज कुंद्रा, पायल राजपूत, गर्विता सधवानी अते होर कई साथी कलाकार। 7 अगस्त तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
2: मेरे नाल तां कुछ खेड़दा ही नहीं, सब खोल दी लंग जांदे ने।
1: वादवा प्रोडक्शंस अते पैनोरमा स्टूडियोज पेश करदे हन नवी पंजाबी फिल्म बंद अखां नाल किसे अपने नू वेखण दी कहानी, कणकां दे ओले।
3: साडा रब वसदा ए कणकां दे ओले नी।
1: स्टारिंग गुरप्रीत गुग्गी, तानिया, किश्तू के अते होर कई साथी कलाकार।
2: हुण दस्सो मैनू कणकां दे ओले कौन।
1: रिलीजिंग ऑन 31 जुलाई।
2: दस्सो।
4: रेडियो, हां जी, 1674 है।
5: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
6: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
5: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
6: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
5: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
6: आहो जी आहो,
5: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18। ਹੁਣ ਪੈਰਾਮੈਟਾ ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਐਮਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ, ਜਾਓ ਇਧਰ ਉਧਰ, ਸਿੱਧੇ ਆਓ ਆਈਐਮਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕਿੱਲਡ ਵੀਜ਼ਾ 186 189 190 482 491, ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪੀਆਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਆਈਐਮਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਕਾਲ 02906316 18। ਹੁਣ ਪੈਰਾਮੈਟਾ ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਐਮਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਅਕਸ਼ਰਾ ਜੂਲਰਸ ਵੱਲ ਲੈ ਲੋ।
6: ਉਹ ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ।
5: ਉਹ ਆ ਕਿਧਰ, ਹੈਰੀ ਸਪਾਰਕ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?
6: ਅਕਸ਼ਰਾ ਜੂਲਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਿਵਰਸ ਤੰਚ।
5: ਯਾਨੀ ਹੁਣ 22 ਕੈਰੇਟ ਗੋਲਡ ਹਾਲਮਾਰਕ ਜੂਲਰੀ, ਡਾਇਮੰਡ ਜੂਲਰੀ ਅਤੇ ਬਰਥ ਸਟੋਨ ਰਿੰਗਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਿਲਵਰ ਆਈਟਮਸ, ਪੂਜਾ ਆਈਟਮਸ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਦੋ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ।
6: ਆਹੋ ਜੀ ਆਹੋ,
5: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
7: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
8: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
7: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
8: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: मनोज जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: टिकट ता साडे सारेयां दे अंदर होंदा है, मौका मिलदा है जो हाथ लगदा है ओह लुट लैंदा है।
4: सिर्फ फिल्म ही नहीं, ए है पंजाब दी सब तो वड्डी चोरी, द ग्रेट पंजाब रॉबरी।
3: जदो ए जोकर तख्त ते बैंदा है तां ओह राजा नहीं बनदा, ओह पूरे राज नूं सर्कस मना लैंदा है।
4: स्टारिंग राज कुंद्रा, पायल राजपूत, गर्विता सधवानी अते होर कई साथी कलाकार, 7 अगस्त तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
5: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji.

मैं तुहानू एक गल दस दिना, देखी नहीं छड्डो, सुनी जाओ, क्योंकि अगला गाना जिहड़ा है ओ अरनास ते अरमान गिल दा आया लॉटरी। सो सुनदे हैं कि कहे जी लगी है लॉटरी इस बार। ते प्रोग्राम एक डीप टॉक शो दे लई 5 बजे तक जुड़े रहो। हाँ जे मेलबर्न स्टूडियो तो हैगे हो तो फिर मेलबर्न का स्टूडियो स्विच करके सिडनी वाले पासे आ जाओ।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: आवे सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: वेलकम बैक जी, डीप टॉक शो दे विच तुहाडा एक बार फिर तो स्वागत। ब्रेक दे इस हिस्से दे विच हुण गल साइंस दी वी कर लईए, इधर उधर दियां गल्लां तां होईगियां। डॉक्टर संदीप कौर जी साडे नाल फोन लाइन ते मौजूद हैं। संदीप जी वेलकम बैक।
2: थैंक यू जी।
1: ठीक है, वो हिस्टरी दे हवाले दे नाल भी समझ गए, सारा कुछ ठीक है। बट जिदा आप पिछले सैगमेंट दे विच गल जिथे सवाल छड के गए, मेडिटेशन जिहड़ी माइंडफुलनेस या होर भी जिन्नियां भी दिमाग दे नाल जुड़ियां होईयां कमियां या विकार या डिसऑर्डरस हैगे ने, उहदे विच मेडिटेशन जोड़ दिता जांदा है कि ऐदां करो तो ठीक होंगे। जाहिर जी गल है कि दिमाग तो मेडिटेशन का आपस दे विच बड़ा लिंक हैगा और बड़ा गहरा लिंक हैगा। सो हुण अज दी तरीक दे विच मेडिटेशन सिर्फ और सिर्फ इत्थे तक सीमित नहीं रह गया हैगा कि स्पिरिचुअलिटी दे नाल, जां जिवें योगा नूं भी स्पिरिचुअलिटी दे नाल जोड़ दिता जांदा है, वह भी एक ठीक है। जे वह मकसद तुसीं हासिल करना तो उवें भी कर सकदे हो, पर जिवें कहने हैं कि एक तीर ते कई निशाने, मेडिटेशन ते न्यूरोसाइंस दे आपस दे विच की लिंक है गया। तुसीं शुरुआत दे विच एक हिंट दिता सी, बाद दे विच दसदे आं वी साइंसदान की कहंदे ने।
2: हाँ जी, जिवें मैं पहला आप गल्लां कीती कि फिलोसफर जिहड़े आ किहना चीज़ां लई जिहड़े करदे सी, जां पुराने टाइम तो जिहड़ा साडे डिफरेंट ट्रेडिशंस दे विच क्यों मेडिटेशन करते सीगे, उस टाइम दे की सीगा कि ऑब्जरवेशनल बेस्ड हुंदियां सी ना, कि कुछ लोगों ने की मेडिटेशन तो हौली हौली उन्होंने पता चलिया कि बेनीफिट होंगे, फिर उन्होंने फॉलो करने वाले ने होर लोगों ने की बेनीफिट पता चल गया। पर जो असं साइंस की ज न्यूरोसाइंस की गल करें, सो न्यूरोसाइंस सा मेन परपज होंगे कि असी देखिए एक्चुअल च कि एक्चुअल चेंजिस हो रहे, ब्रेन च की चेंजिस हो रहे है ना। सो जे

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। आई एम ई एडवाइजर।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू पूर्वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
3: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
3: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा या स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: You are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji.
2: Radio Haji. 1674 AM, 24/7 Indian Radio. Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Haji.
0: Stay tuned.
3: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

ग्रोवर्स, विंग ग्रोवर, हांजी हांजी 1674, ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो हांजी AM।

0: मैं रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा भी लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: हे मैन सतबीर औजला गीत MP3
3: सारा शहर हमें लॉइन के नाम से जानता है मोना डार्लिंग।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au। वाहेगुरु।

0: Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, Sister Shivani.
1: Om Shanti.
0: Om Shanti and welcome to Being Bliss.
1: Thank you so much.
0: Sister, last episode mein hum baat kar rahe the about victim kaun hai aur
1: master kaun hai.
0: Abhi aapne jis cheez ko main abhi tak master samajhta aa raha tha, usko victim bol diya. Ab 360 degrees ka change hai meri thinking aur aapne jo sikhaya usme.
1: Victim means kaun? Slave means kaun? Jo gulam hai. Jo master hai, malik hai apne man ka. Aur ek hai jo apne man ka gulam hai. Jiska man apne control mein nahi hai. Jo apne man ko jab chahe, jahan chahe, jis tarah chalaye, wo nahi chala sakta hai. Wo gulam hai. जिसका मन की स्थिति उसके हाथ में नहीं है, वो दूसरों के व्यवहार पे डिपेंडेंट है और इसीलिए वो सारा दिन अपने पे मास्टर बनने की बजाय, अपने पे रूल करने की बजाय औरों पे रूल करने की कोशिश करता है. सी वन थिंग इज, अगर आपका व्यवहार मुझे इरिटेट कर रहा है, अभी कोई भी बात आपकी मुझे इरिटेट कर रही है,
0: मैं पेन लेके टिक टिक टिक टिक
1: चलो ठीक, इतनी छोटी सी चीज है, आप पेन लेके टिक टिक कर रहे हो, कोई ऐसे ऐसे कर रहा होता है, यू नो, क्रैकिंग देयर नकल्स,
0: प्लास्टिक की थैली में सामान निकालते जा रहे, चिप्स खाते जा रहे, मैं पिक्चर देख रहा हूँ.
1: अब ये कितनी छोटी बात है, इनफैक्ट इसको कोई हम बात भी नहीं कह सकते, एक छोटी सी सीन है, कोई ऐसा कर रहा है एंड आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड एंड एट दैट टाइम आई से यू इरिटेट मी. Right? You irritate me. And then I go to the extent of saying, you are very irritating. We say this, ये हमारी vocabulary है, ये हमारी रोज की भाषा है. ये बहुत irritating है. ये बहुत irritating है. या ये मुझे irritate कर रहा है. Means, कि इसका ये व्यवहार मेरे अंदर चिड़चिड़ापन लेकर आ रहा है. Right? अब मेरे पास दो options हैं इस time पर. या तो मैं अपने मन को इसके व्यवहार के प्रभाव से बाहर निकाल लूं, मतलब यहां आपका एक्शन, यहां इरिटेशन, ठीक है, दो चीजें हो रही है, ये इरिटेशन मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो मैं चाहती हूं मेरा मन वापस शांत हो जाए. तो एक ऑप्शन ये है कि मैं अपने मन को कहूं, हे मन, क्या प्रॉब्लम है, इतनी सी बात पे इरिटेटेड, वो कर रहे हैं, तुम अपना आराम से बैठो प्यार से. ये एक ऑप्शन कि अपने मन को इंस्ट्रक्शन देना. दूसरा ऑप्शन, आप प्लीज आराम से बैठेंगे ताकि मैं शांत हो जाऊं. तो दो लोग हैं जिनको मैं इंस्ट्रक्शन दे सकती हूं अपने मन की स्थिति को ठीक करने के लिए. या तो अपने मन को इंस्ट्रक्शन दे दूं कि शांत हो जाओ, या आपको इंस्ट्रक्शन दे दूं कि आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओगे तो मैं शांत हो जाऊंगी. मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अपने मन को इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मेरा मन मेरा कहना नहीं मानता है.
0: मैंने सोचा भी नहीं ऐसा ना.
1: मैंने सोचा भी नहीं ऐसा.
0: मैं अपने आप को बोलूं, मैंने तो ये नहीं सोचा. मुझे लग रहा है कि माँ बेटा ले आए हैं चिप्स खरीद के इंटरवल में, खर खर खर खर खर खर अच्छा सीन चल रहा है मूवी में और कचर पचर खाते भी जा रहे हैं.
1: वी आर नॉट सेइंग कि वो जो कर रहे हैं
0: वो राइट है,
1: वो राइट है या रॉन्ग है. अगर कोई कर रहा है ऐसा कुछ भी, या जैसे कई बार हम प्रोग्राम्स करते हैं या मूवी में है तो किसी का मोबाइल बज जाता है, अभी वी कैन से इट्स वेरी इजी टू से इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, मोबाइल नहीं बजना चाहिए. ओके, राइट, मोबाइल एक साइलेंट प्लेस पे, या आप पूजा में है, मेडिटेशन में है, मंदिर में है, थिएटर परफॉर्मेंस देख रहे हैं, मोबाइल नहीं बजे. लेकिन बजा एंड आई गॉट इरिटेटेड. अब दो ऑप्शन है ना, या तो अपने मन को ठीक कर दूं या उनको ठीक कर दूं. एंड रिजल्ट क्या चाहिए? मन शांत हो जाए. दिस वी ऑलवेज नीड टू रिमेम्बर, व्हाट इज द एंड रिजल्ट बिहाइंड एवरीथिंग. आई वांट पीस एंड हैप्पीनेस.
0: आई वांट
1: पीस एंड हैप्पीनेस मींस आई वांट माय माइंड टू बी काम. अब जैसे ही आपने कुछ ऐसा किया जिससे मेरा मन जो एकदम अच्छा शांत चल रहा था वो ऐसे ऐसे होने लग गया, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया,
0: बच्चे को सिखाते नहीं है, ये नहीं है,
1: हाँ, ये सब चीजें, ये मेरी थॉट्स चलने शुरू हुई इन रिस्पॉन्स टू
0: ये थिएटर वाले अंदर क्यों लाने देते हैं खाने की चीजें.
1: राइट, कितनी सारी थॉट्स. सी, ये थॉट्स किसने क्रिएट की? मैंने क्रिएट की इन रिस्पॉन्स टू आपका वो प्लास्टिक की आवाज क्रिएट करना. आपने प्लास्टिक की आवाज की, लेकिन थॉट्स किसने क्रिएट की? वो मैंने की.
0: वॉट
1: इज द इरिटेशन? योर विच इज वेरी ब्यूटिफुल. लेट अस चेक वॉट इज द इरिटेशन, द प्लास्टिक नॉइज और द थॉट्स विच आई क्रिएट इन रिस्पॉन्स टू दैट प्लास्टिक नॉइज.
0: मैं तो ऐसा कहूंगा कि क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट चिप चिप चिप चिप चिप चिप, मुझे वो चीज, मुझे ये थॉट्स क्रिएट मुझ में वो कर रहे हैं.
1: वो
0: मैं नहीं कर रहा हूँ.
1: एक प्लास्टिक का पैकेट, एक बॉल पेन का टिक टिक,
0: डिस्टर्बेंस इज क्रिएटिंग सच थॉट्स इन मी.
1: दैट डिस्टर्बेंस इज क्रिएटिंग सच थॉट्स इन मी. थॉट कहाँ क्रिएट होती है?
0: मुझ में क्रिएट हो रही है ना उसके इरिटेशन.
1: यहाँ क्रिएट हो रही है ना?
0: हाँ, मेरे मन,
1: मेरा मन कहाँ पे? यहाँ. थॉट क्रिएट हो रही है यहाँ. प्लास्टिक बज रहा है वहाँ. बॉल पेन टिक टिक हो रहा है वहाँ. मोबाइल बज रहा है वहाँ. थॉट क्रिएट हो रही है यहाँ. किसने क्रिएट की?
0: इस सिचुएशन ने, इस परिस्थिति ने.
1: बट उस बॉल पेन
0: के बिहेवियर ने,
1: इनके बिहेवियर यहाँ है. आपका बिहेवियर यहाँ है.
0: बाहर का बिहेवियर मेरे अंदर वाले को डिस्टर्ब कर रहा है ना?
1: बाहर का बिहेवियर यहाँ है ना. अभी आप कैसा भी बिहेव कर रहे हैं, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. आपका बिहेवियर यहाँ है. लेट से आपका बिहेवियर बिल्कुल गलत है, ये भी हम बोलते हैं अभी एक मिनट के लिए कि आपका बिहेवियर कम्प्लीटली रॉन्ग है, लेकिन यहाँ है. आपके बिहेवियर को देखकर मैं थॉट्स क्रिएट करती हूँ. आपने अभी कहा वो प्लास्टिक चिरचिर चिरचिर मेरे अंदर वो थॉट्स क्रिएट करता है. वो प्लास्टिक मेरे अंदर थॉट्स क्रिएट करता है. यहाँ वो यहाँ घुसकर थॉट क्रिएट करेगा.
0: उसकी वजह से हो रहा है.
1: उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन क्रिएट कौन कर रहा है?
0: कोई दुनिया में चुनता है कि इरिटेशन की? आपने बोला कि आई क्रिएट, आई चूज, आई एम थिंकिंग.
1: आस्क सेल्फ एंड लेट्स चेक इट इमीडिएटली. 100 लोग बैठे हैं आसपास इस मूवी थिएटर में. बीच में सेंटर में कोई फोन बजाए या प्लास्टिक आवाज आई, सब 100 लोग रिस्पॉन्ड करेंगे.
0: कोई बुड़बुड़ करके करेगा, कोई जोर से करेगा, कोई मनी में करेगा, कोई ये चाहेगा यार कोई तो उसको बोले, मैं तो नहीं बोल सकता, मुझमें हिम्मत नहीं है.
1: राइट.
0: तो
1: अलग अलग थॉट्स ना. तो वो है एक प्लास्टिक, हर एक के मन में अलग अलग थॉट्स क्रिएट किया.
0: जी.
1: किसने क्रिएट किया अलग अलग मन में थॉट?
0: सब अलग अलग आदमी ने.
1: क्रिएटर कौन है वो फाइनल?
0: मैं क्रिएटर हूँ.
1: प्लास्टिक
0: मुझमें क्रिएट हो रही है.
1: ये पक्का?
0: ये नहीं ना कि वो प्लास्टिक और इस क्रिएशन से मैं दुखी हूँ.
1: वो भी कोई बात नहीं. इम्पोर्टेंट ये बात जितनी छोटी लगती है ये उतनी छोटी नहीं है कि ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ. जो हमने कहा पहले कि वो प्लास्टिक की चूर चूर मेरे अंदर वो थॉट क्रिएट कर रही है. वी वर सेइंग दैट इज क्रिएटिंग दिस एंड दैट्स व्हाई वी सेड दैट इज इरिटेटिंग. That is irritating.
0: That person is also irritating.
1: That person is also irritating. Because that person's behavior caused me to create this. Let us at least now remember, चाहे वो एक छोटा सा प्लास्टिक की आवाज है, चाहे वो जीवन की एक बहुत बड़ी परिस्थिति है, इक्वेशन सेम होगी. एक चीज हमें कम्प्लीटली हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, प्रॉब्लम या चैलेंज जो भी जीवन में आता है वो उसका साइज कुछ भी हो, इक्वेशन सेम रहेगा हमेशा. जैसे मैथ्स में हमें इक्वेशन सिखाते थे ना एग्जाम में जाने से पहले, प्रॉब्लम थोड़ी पता होती थी कौन सी आएगी एग्जाम में, लेकिन इक्वेशन सही हो गई तो प्रॉब्लम कोई भी आए, राइट इक्वेशन. ये इक्वेशन को अपनी लाइफ में पहले फिक्स करना है. उनका व्यवहार, उनका वो पेन टिक टिक करना, उनका लेट आना, उनका झूठ बोलना, उनका इनसिंसियर होना, उनका मुझे धोखा दे देना, उनका कुछ भी कर देना, वो बाहर है, वो यहाँ है. यहाँ तक सीमित है. कोई मुझे फाइनेंशियली धोखा दे सकता है, कोई मुझे फिजिकली भी मार सकता है, कोई मेरे पास सब कुछ जो है वो सारा कुछ नुकसान कर सकता है, लेकिन उस छोटी सी बात में या बड़ी से बड़ी बात में मैं कैसे सोचूंगा, क्या सोचूंगा, कितना सोचूंगा. यू नो लाइक इस केस में भी आपने कहा प्लास्टिक क्यों लाए, बच्चे को पेरेंट ने सिखाया नहीं, थिएटर वाले ने अंदर लाने क्यों दिया, रूल. सी दीज आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ.
0: दस सेकंड पहले एक चिड़िया जरूर से बोली, उसके साथ एक कौवा बोला जब आप बात कर रही थी, तब मेरी आंख भी वहां नहीं गई। वो तो एक्सेप्टेड था ना,
1: एक्सेप्ट
0: क्योंकि हम जंगल में हैं,
1: राइट।
0: चिड़िया बोलेगी, कौवा भी बोलेगा, नेचुरल नॉइज आएगी,
1: राइट।
0: तो मैं वहां थोड़ी बोलूंगा ये चिड़िया क्यों बोली,
1: एक्सेप्टेड है। लेकिन थिएटर में कोई प्लास्टिक की आवाज करे, नॉट एक्सेप्टेड।
0: आप इंटरवल में खाओ, बाहर खा के आओ।
1: हाँ, ये भी है ना, बाहर खाओ, ये नहीं मालूम आपको, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हम किसको दे रहे हैं?
0: अपने आप को, अपने मन मन में दूसरे को दे रहे हैं।
1: दूसरे को दे रहे हैं, और दूसरे को वो इंस्ट्रक्शन देते हुए हम क्या कह रहे हैं, यू आर द कॉज ऑफ माई पेन।
0: करेक्ट।
1: योर वर्ड, योर बिहेवियर, योर एक्ट इज कॉजिंग मी पेन। आई वॉन्ट हैप्पीनेस इन लाइफ, प्लीज चेंज। ये इक्वेशन हमने बना ली जीवन की। आपका व्यवहार मुझे दर्द देता है, मुझे जीवन में सुख शांति खुशी चाहिए, प्लीज आप बदल जाइए, प्लीज चेंज। सारा दिन जीवन में कर क्या रहे हैं?
0: यही,
1: औरों को बदलना, औरों को बदलना, औरों को बदलना।
0: मेरी गाड़ी का दरवाजा जोर से मत मारो, मुझे दर्द होता है।
1: वो भी ठीक है, अगर आप गाड़ी में हैं, किसी ने जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद किया, आपको बोलना है,
0: बट इरिटेटेड नहीं होना है। ये नहीं बोलना है कि इसको अकल नहीं है, गाड़ी में कभी बैठा नहीं, क्यों बिठाया, क्यों लिफ्ट दिया इसको, लिफ्ट मांग के जोर से दरवाजा बंद करते, और शीशा उस जमाने में पुराने, अब तो वो है बटन, वो शीशा ऐसे से खुला करते थे, ऐसे नहीं होता था, तो शीशा भी उतर के मुझे वापस चढ़ाना पड़ता था,
1: वो भी इरिटेशन।
0: देखो
1: सी, एंड फिर ये सारा कुछ सोचने के बाद सोच लिया, वो भी
0: तो लिफ्ट दूं।
1: नहीं नहीं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सोच लिया, ये सारी थॉट्स क्रिएट कर ली, मन अशांत हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं।
0: अब ब्लेम तो उसको ही करूंगा जिसने
1: ब्लेम
0: किया।
1: उसको किया,
0: उसी ने मेरी खिड़की खुली रखी, उसी ने मेरे दरवाजे को जोर से मारा, कर्टेसी नहीं चाहिए।
1: नहीं नहीं, परफेक्ट, सी ऑल दीज लाइंस आर सो ब्यूटीफुल। उसने लिफ्ट मांगी, उसने खिड़की खुली रखी, उसने दरवाजा बंद किया जोर से,
0: गंदे चप्पल जूते लेके मेरी मिट्टी भी डाली मेरी गाड़ी में,
1: मेरी गाड़ी में मिट्टी भी डाली, ये सब कुछ उसने किया,
0: और सिगरेट भी पीने जा रहा था जब मैंने डांट दिया।
1: ओके, तो ये सारा कुछ उसने किया, सो वी आर गोइंग टू होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फोर थिंग्स। लिफ्ट मांगी, गाड़ी खिड़की खुली रख दी, दरवाजा जोर से स्लैम कर दिया, मिट्टी गाड़ी में भाग गई, सिगरेट भी गाड़ी में पी ली, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फाइव थिंग्स? ही इज रिस्पॉन्सिबल। मैंने क्या क्या सोचा वो सब देखने के बाद, वो हु इज रिस्पॉन्सिबल?
0: मैं तो सोचने पे मजबूर हुआ ना।
1: मजबूर मतलब, मजबूर कौन होता है? जो गुलाम होता है।
0: प्रैक्टिकल में देखो आप,
1: प्रैक्टिकल में
0: आप यहाँ बैठे हैं, धूप लग रही है,
1: राइट,
0: तो आप बोलेगे यार बहुत धूप लग रही है,
1: परफेक्ट,
0: और छांव में जाओगे बोलेगे कितना ठंडा, अच्छा है,
1: परफेक्ट
0: बोलेंगे। इसी तरह मुझे वो सारा गाड़ी वाला जो हुआ, मैं बोलूंगा सब कुछ बुरा लगा।
1: अब इतनी देर में जब आप इनके बारे में सोच रहे हैं जो गाड़ी से उतर के चले गए हैं, ये जीवन की छोटी छोटी बातें हैं, उतनी देर में
0: से उतर के चले नहीं गए, जाते जाते ढेर सारे प्रॉब्लम छोड़ के गए।
1: प्रॉब्लम छोड़ गए ना, खिड़की खुली रख दी, गाड़ी गंदी हो गई, सिगरेट की भी स्मेल आ रही है, दरवाजा भी हो सकता है थोड़ा सा खराब हो गया, वो सारी प्रॉब्लम्स वो देके गए हैं मुझे, चैलेंजेस। अब आप उसके बारे में सोच रहे हैं और ऐसी ऐसी वाली बातें सोच रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, 5 मिनट बीत गए, आप इरिटेशन क्रिएट हो रही है। उतनी देर में आपको एक फोन आ गया और वो फोन कोई और थोड़ी बड़ी बात आ गई, शायद आपके बिजनेस में, आपके स्टॉक मार्केट में, आपके कहीं और, या कुछ भी ऐसी बात कि कहीं और थोड़ा कोई बड़ी बात आ गई, ऊपर नीचे हो गया है। अब आपको वो व्यक्ति नहीं याद आएगा ना?
0: नहीं, उससे बड़ी चीज याद आएगी।
1: अब वो बात गई,
0: वो गई,
1: अब वो थॉट गई। अगर वो व्यक्ति क्रिएट कर रहा था, इट वुड बी देयर। हुआ क्या, उस व्यक्ति के व्यवहार को लेकर एज अ स्टिम्युलस मैंने ये थॉट्स क्रिएट की। जैसे ही मेरे पास कोई और स्टिम्युलस आ गया, वो थॉट फिनिश्ड, अब ये नेक्स्ट थॉट शुरू हो गए। अब सपोज स्टॉक मार्केट में मेरा कुछ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अब मैं उसके बारे में चिंता क्रिएट करने लग गया, एंड देन आई सेड इट्स बिकॉज ऑफ टुडे स्टॉक मार्केट, इट्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस फ्लक्चुएशन हैपनिंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर, एंड आई केप थिंकिंग, एंड मैंने कहा हु इज रिस्पॉन्सिबल? द मार्केट। यू नो, मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है, लोगों का ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, सब में फ्लक्चुएशन होती है, ये सब हो रहा है। उतनी देर में आपके पास एक और फोन आता है कि सपोज परिवार में, फैमिली में किसी के साथ थोड़ा कुछ हो गया, अब स्टॉक मार्केट कुछ असर नहीं कर रही मेरे ऊपर, अब वो बात भूल गई, वो थॉट गई, बात बड़ी थी लेकिन अब उससे एक बड़ी बात आई, अब उस बात को लिया, उस बारे में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन अब होगा क्या, जब वो थोड़ी छोटी वाली प्रॉब्लम थी, ये तो कितनी छोटी बातें अभी उसके सामने, गाड़ी बंद नहीं हुई, मिट्टी आ गई, ये कितनी छोटी बात, फिर उससे बड़ी बात मार्केट क्रैश, फिर उससे बड़ी बात कि परिवार में किसी के साथ कुछ हो गया। लेकिन जब वो छोटी वाली बात थी, उसमें इस तरह के थॉट्स क्रिएट करते करते मैंने अपनी स्थिति को क्या कर दिया था,
0: सब हिला दिया था,
1: हिला दिया था ना, मैं टर्बुलेंट हो गया, डिस्टर्ब हो गया, इरिटेट हो गया। ऐसी स्थिति में जब बड़ी बात आई, तो उस बड़ी बात में मैं अब कैसे थॉट्स क्रिएट करूंगा, स्टेबिलिटी
0: नहीं, फिर उस लेवल से शुरू होगा वो तो।
1: यस,
0: ऑलरेडी अगर मैं 60 पहुंच गया हूँ,
1: right.
0: वो मेरा 10 से शुरू होगा,
1: एब्सोल्युटली
0: 61, 62 शुरू होगा,
1: एब्सोल्युटली
0: 0 to 10 नहीं होगा,
1: नहीं होगा, क्योंकि मैं
0: ऑलरेडी 75 आना है तो 60+75 होगा।
1: मेरी स्थिति इरिटेशन वाली थी, बड़ी बात आई, अब मेरी स्थिति क्या हो जाएगी, और ज्यादा टर्बुलेंट, एंड आई विल बी लाइक, फियर भी क्रिएट हो गया कि मार्केट क्रैश हो गई, एप्रिहेंशन, एंग्जाइटी ऑफ द फ्यूचर, ये सब क्रिएट हो रहा है। उतनी देर में एक और फोन आया कि फैमिली में कुछ हुआ है, अब थॉट्स किस क्वालिटी के क्रिएट होंगे,
0: ये भी मुसीबत, वो भी मुसीबत, ये भी हो गया, एक
1: Now
0: और प्रॉब्लम,
1: गो इवन मोर टर्बुलेंट बिकॉज आई एम ऑलरेडी टर्बुलेंट। अगर वो जो बड़ी वाली बात थी, लेट्स से ये व्यक्ति लिफ्ट ना लेता, मार्केट की न्यूज नहीं आती और आप आराम से गाड़ी में ड्राइव करके जा रहे थे, और उस टाइम आपको सीधा पहले ये फोन आए
0: सिर्फ कि
1: फैमिली में कुछ हुआ है, यू आर इन अ स्ट्रॉन्गर स्टेट ऑफ माइंड टू फेस दैट सिचुएशन। तब भी आपको चिंता होगी, डर लगेगा या जो भी वो थॉट्स आएंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, क्योंकि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेबल एंड देन क्रिएटिंग लिटिल टर्बुलेंस। लेकिन जब छोटी बात में टर्बुलेंस, फिर बड़ी बात में ज्यादा टर्बुलेंस, तो जब तक बड़ी बात आ गई, वी क्रिएटेड chaos. Why today we said that there is chaos in our mind? क्योंकि हमने छोटी छोटी बातें जो कि रोज आती है, बड़ी बड़ी बातें, ये जो चैलेंजेस बड़े कि फैमिली में कोई हेल्थ, बिजनेस में कोई क्राइसिस, रिश्तों में कोई क्राइसिस, ये कभी कभी आता है जीवन में, सिर्फ ये हर एक के जीवन में कितनी बार आ जाएगा, ये 2 बार।
0: लेकिन आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ और आप मुझे जवाब दे रहे हैं, इसका कोई दवाई, जैसे कोई बीमारी की होती है या किसी चीज का सॉल्यूशन होता है, जैसे आप मैथमेटिक्स का भी एग्जांपल देते हैं, इसमें कोई तरीका नहीं है जीने का,
1: सिंपल तरीका ना, अब नेक्स्ट टाइम कोई आपकी गाड़ी में फिर लिफ्ट लेगा, हम बड़ी बातों को नहीं फेस करेंगे अभी, दिस इज अगेन अनदर इक्वेशन, डोंट ट्राई एंड चेंज योर सेल्फ इन बिग सिचुएशंस। हम एक्सपेक्ट करें कि मेरे सामने कोई बड़ी बात आ जाए एंड मैं स्टेबल रहूं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन राइट नाउ। लेट अस ओनली
0: शुरुआत कैसे करें,
1: छोटी छोटी बातों में, एंड छोटी बातें में
0: सब, जो चिप्स वाली बात, चिबड़े वाली बात,
1: हाँ,
0: वो कुरकुर
1: कुरकुर वाली बात, फिर वो गाड़ी में कोई बैठा और खिड़की खुली रख दी या जोर से दरवाजा,
0: तो भाग के दूसरी को छीट ले लें, भाग जाए, क्या करें,
1: वहीं बैठे, इनका व्यवहार सही नहीं है, मेरे लिए सही नहीं है, राइट, लेकिन मैं इनको नहीं कंट्रोल कर सकता, अब उन्होंने जिस तरह से गाड़ी बंद करनी है कर दी, हे मन, मैं उनको नहीं कंट्रोल कर सकता, वो मेरी बात नहीं मानते हैं, तुम तो मेरी बात मानो, शिफ्टिंग फ्रॉम विक्टिम स्लेव, स्लेव मतलब जिसको कहना मानना पड़ता है, एंड मास्टर मतलब जो कहना मनवाता है, अपने मन के मास्टर, रूलर, विच मीन्स हम जब मन को कहेंगे बस इसके ऊपर 2 थॉट्स क्रिएट कर ली ना, दैट्स ऑल दैट वाज नीडेड, 50 थॉट नहीं चाहिए इतनी सी बात के लिए, बस कर दिया ना उन्होंने वो, ठीक है, उनको नहीं आता था कैसे करना है ना, नेक्स्ट टाइम आई विल चूज।
0: चिवड़ा चिप्स जब खत्म हो जाएंगे आप ही, आवाज बंद हो जाएगी,
1: नहीं भी आएंगे तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है,
0: जब जोर से चिड़िया बोली कौवा भी बोला,
1: यस, तो एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट, क्यों एक्सेप्ट, बिकॉज आई एम वेरी वेरी क्लियर कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, दिस क्लैरिटी, ये नॉलेज, दे आर नॉट इन माई कंट्रोल, ये इक्वेशन फिक्स्ड, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट। हाँ, ये देखेंगे कि वो अपने आप क्यों आ जाती है थॉट, जैसे आपने कहा ना, मैं चूज थोड़ी कर रहा हूं गंदी वाली थॉट क्रिएट करनी, अगर मैं चूज करता तो अच्छी वाली करता, कितनी गंदी करनी है, इतनी गंदी कैसे कर दी है, मैंने चूज थोड़ी किया, चूज कैसे करना, दैट्स अ सेकंड पार्ट. फर्स्ट इम्पोर्टेंट इज ओनली हु इज द क्रिएटर ऑफ माय थॉट, एंड फॉर दैट वेरी इम्पोर्टेंट, नेवर एवर आर नाउ वी गोइंग टू से दे आर इरिटेटिंग, दे इरिटेट मी. नो, गेट इरिटेटेड, बट नाउ द लैंग्वेज विल हैव टू बी आई क्रिएट इरिटेशन इन रिस्पॉन्स टू देयर बिहेवियर. सो ये अब इंटरेस्टिंग गेम हमें सारा दिन खेलने हैं कि सिचुएशन, लोग, मेरा मन, दो एंटिटीज है.
0: ये अच्छा आप कह रहे हैं, गेम
1: गेम है ना, दो चीजें हैं.
0: मेरे कान में दर्द होता है वो देखिए, टिक टिक कोई पेन मारता रहता है.
1: चलो इतनी सिंपल भी चीज है कि वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलेंगे, प्लीज ऐसा मत कीजिए. हम बोलते हैं ना किसी को, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, सपोज, राइट राइट. नाउ आई हैव टू ऑप्शंस, ईदर आई टेल यू प्लीज डोंट डिस्टर्ब, और आई टेल माई माइंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब.
0: इसको एक बार बोलूंगा, पांच मिनट के बाद फिर शुरू कर देगा, या पैर ऐसे ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा ताकि कुर्सी ऐसे ऐसे हिलाता रहे, मेरी भी कुर्सी.
1: इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट है दुनिया में कितने लोगों को बोलेंगे. ये सब जीवन की छोटी छोटी चीजें हैं. व्हाट अबाउट द बिग थिंग्स देन? लोग अपने अनुसार जीवन जिएंगे. आप सिर्फ ये दो ऑप्शंस को हर समय अब सारा दिन आज रखना है. ये होमवर्क है, ये होमवर्क है. सामने कोई ऐसा कर रहा है, अब छोटी चीजों में करना है ये होमवर्क, बड़ी चीज में नहीं करना कि किसी ने कोई मेरे साथ गलत किया, धोखा दिया, फॉरगेट बिग थिंग्स टुडे. एकदम छोटी छोटी बातें, किसी का फोन बज रहा है, कोई ट्रैफिक में रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा है, कोई ओवर स्पीड कर रहा है, कोई मेरी गाड़ी से बहुत नजदीक जा रहा है, कोई लेन टच कर रहा है, कोई लेट आ रहा है.
0: तो छोड़ दीजिए, कोई खाने पे मुझे बुलाता है तो समझो चार औरतें खाना खिला रही हैं, जबरदस्ती की मेरी प्लेट में खाना वही सब्जी डाल देते जो पसंद नहीं है.
1: ठीक है,
0: अब उसको कैसे बोलो कि भाई मत डाल, पूछ तो लो.
1: कैसे बोल सकते हैं?
0: एक बार बोला, नहीं नहीं नहीं नहीं, आपको खाना है बहुत मजे की, तुम्हारे लिए मजे की होगी भाई.
1: हाँ?
0: मुझे चावल खाने, रोटी दो, अब घी वाली खा लो एक रोटी.
1: ठीक है,
0: अब ये इरिटेटिंग पॉइंट्स लगते हैं मुझे. आप पता नहीं क्या आप, आपको कैसे लगता है कि इन चीजों को पूरा दिन बर्दाश्त करता रहूं. नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ कि इसका कोई सोल्यूशन मुझमें है.
1: नो नो, वी हैव टू, वेरी फाइन, व्हाट्स द सोल्यूशन? लेट्स आस्क मी, आई आस्क माई सेल्फ, व्हाट्स द सोल्यूशन?
0: सोल्यूशन ये है कि चुप रहो, बर्दाश्त करते रहो.
1: नो, ये सोल्यूशन नहीं है कि चुप रहो. सोल्यूशन है पहले अपने मन को चुप कराओ. लेट्स से आप यहाँ हैं, ओके, एंड आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको देखकर मैं इरिटेशन क्रिएट कर रही हूँ. सो लेट मी, चलो फर्स्ट ट्राई एंड कंट्रोल यू
0: जी,
1: इवन इफ आई फील दिस इज.
0: चलिए, पहले एपिसोड्स में मैं बोलता जा रहा था, आपको इरिटेट कर रहा था, मैं अपने ओल्ड बिलीफ
1: में. मैंने नहीं कहा कि आप इरिटेट हो रहे थे. हाँ, तो आप इरिटेट नहीं कर रहे थे,
0: और आप इतना अच्छा जवाब दे रहे थे प्यार से, और मैं चिड़चिड़ के बोल रहा ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है. मैं पहले तीन एपिसोड्स में मैं चिल्ला तो रहा था.
1: अब
0: तब आप कैसे शांत थे ये मुझे समझाइए ताकि मैं भी सीख लूं आपसे.
1: Because
0: आपने वही प्यार से ऐसे ऐसे ऐसे मीठा मीठा जवाब दिया, आपकी ना आवाज उठती है ना जीजी होती है, ये सब क्या जादू है ये?
1: क्योंकि आप जो कर रहे थे वो बिल्कुल सही था.
0: जो मैं चिड़चिड़ कर रहा था, आपको टोक रहा था, बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, मैं बात नहीं मान रहा था आपकी, मेरी आपकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, यहाँ तक मैंने बोल दिया कि आपकी बातें प्रैक्टिकल नहीं है, तब भी आप शांत रहे.
1: जब हम स्वीकार करते हैं कि जो दूसरा कर रहा है वो अपने दृष्टिकोण से सही कर रहा है, वो भी चलो गहरी बात, वो हम धीरे देखेंगे बाद में. पहले हम सिचुएशन में देख लें. सपोज चलो आप ये सिचुएशन कहो कि लेट्स से आप बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं, बार बार कट कर रहे हैं
0: बात. बट आपकी बात करते करते बीच में भी बोल रहा
1: ठीक
0: था.
1: ठीक है, चलो सिचुएशन, वन सिचुएशन. तो दो ऑप्शन है मेरे पास, दो ऑप्शन है. या तो एक, आपको कंट्रोल करो. आपको कंट्रोल करो मीन्स आपको बोलो, डोंट टॉक लाइक दिस टू मी,
0: डोंट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम स्पीकिंग,
1: डोंट डिस्टर्ब,
0: ताकि मेरा फ्लो टूटता है. आप इतना तो बोल सकते थे, वो भी नहीं बोला आपने.
1: आप पूछ रहे हैं, इंटरजेक्ट कर रहे हैं. दो ऑप्शन, एक तो पहले चेकिंग कि क्या मेरा मन अशांत हो रहा है. अगर मन अशांत नहीं हो रहा तो एवरीथिंग इज परफेक्ट. अब दूसरी ऑप्शन, अगर मन अशांत हो रहा है तो मैं आपको बोलूं प्लीज डोंट डिस्टर्ब. फिर आप जब वो करना बंद करें मेरा मन ठीक हो जाए.
0: लेकिन मैं जब लोग मेरी प्लेट में चावल या रोटी जबरदस्ती डाल जाते हैं और हट जाते हैं और मैं बोल देता हूँ कि भाई आप जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो, चिढ़ जाता हूँ, उसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरा मन अशांत हो रहा है, रोटी से पहले पता चले तो मैं नहीं कुछ नहीं बोलू ना,
1: राइट। अब इसका मतलब नहीं, बट इसका मतलब
0: ये भी दो दिन बाद लगता है कि मैंने रूडली बोल दिया।
1: दैट्स बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो ऑटोमेटिक वे ऑफ लिविंग में चला गया है, अवेयरनेस नहीं होगी। इट्स लाइक रॉन्ग टर्न ले लिया, अवेयरनेस नहीं है। 4 किलोमीटर चलाने के बाद पता चला कि रॉन्ग टर्न लिया है। अगर ड्राइव करते हुए अवेयर होते हम जर्नी ऑफ लाइफ पे, तो टर्न लेते ही पता चलता ना कि रॉन्ग टर्न लिया है। ऐसे ये सारा दिन में संस्कार क्योंकि ऑटोमेटिक बन चुका है तो उस टाइम अवेयरनेस नहीं आएगी। अब इम्पोर्टेंट ये भी है कि ऐसा नहीं इसका मतलब कि लोग कुछ भी करें। दिस इज नॉट व्हाट इट इज सेइंग कि ठीक है आपको जो करना है आप करो एंड आई विल नॉट से एनीथिंग। इम्पोर्टेंट इज फर्स्ट आई विल गिव इंस्ट्रक्शन हियर, देन आई विल गिव इंस्ट्रक्शन देयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें
0: और क्या ये हो सकता है कि जैसे मैं यहाँ इंस्ट्रक्शन दे दूं फिर उसको जरूरत ही ना पड़े वहां देने की?
1: नहीं, अगर आपका रोल है एज अ पेरेंट सपोज, एज अ टीम लीडर सपोज, सपोज आपकी गाड़ी में कोई बैठ के सिगरेट पी रहा है एंड इट डजंट गो वेल फॉर यू, आपके लिए हेल्दी नहीं है, एनवायरमेंट के लिए हेल्दी नहीं है, इवन अ सिंपल थिंग लाइक इट्स नॉट नाइस फॉर मी,
0: तो आई वॉन्ट टू से
1: आई वॉन्ट टू से इट टू द अदर पर्सन, लेकिन गेट इरिटेटेड एंड देन से इट, तो फिर बात ये हो जाएगी कि आपका सिगरेट पीना मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब कर देता है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप सिगरेट इसलिए ना पिए क्योंकि मेरा मन आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। और दूसरी चीज ये है, मैं ठीक हूं, मेरा मन भी ठीक है बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप सिगरेट ना पिए
0: वातावरण खराब होता है मेरे।
1: टू थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। ये चीज सारा दिन देखनी है। कंट्रोल उनको कर नहीं रहे हैं, अपने को कंट्रोल कर रहे हैं और फिर सिचुएशन और लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं।
0: वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। मतलब जो मैं उनको कंट्रोल कर रहा हूँ कि अकल नहीं है तुमको, सिगरेट पीते हो, पीना है तो उतर के पियो, गाड़ी रोक लो, इधर जाओ उधर जाओ, हमको तो बोल दो, दूसरे आदमी को पसंद है नहीं पसंद है पूछो, इतना करने के बदले उनको कंट्रोल नहीं करके अपने आप को कंट्रोल करो और उनको
1: इंस्ट्रक्शन भी देना है। हाँ,
0: तो भी आई एम एलर्जिक, मुझे अच्छी नहीं लगती।
1: एब्सोल्युटली। एंड व्हाई आर यू गिविंग दैट इंस्ट्रक्शन हैज टू बी वेरी क्लियर। दैट इंस्ट्रक्शन इज नॉट फॉर योर पीस ऑफ माइंड बिकॉज यू आर ऑलरेडी पीसफुल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: हम इजंट इट फॉर माय पीस?
1: नो, यू आर ऑलरेडी पीसफुल बिकॉज यू डिड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड।
0: अच्छा, क्योंकि मैंने अपने आप को कंट्रोल करके समझा
1: दिया। कंट्रोल मतलब आई डिड नॉट गेट फ्लक्चुएट, आप मुझे नहीं फ्लक्चुएट कर पाए,
0: तो मैं इस वक्त काम और पीसफुल और स्टेबल हूँ।
1: हाँ, लेकिन परिस्थिति, ऑफिस का काम, घर का स्टाफ, बच्चों का कर्म, ये सब का ध्यान रखना भी मेरी जिम्मेवारी है, तो आई विल गिव इंस्ट्रक्शन, बट दैट इंस्ट्रक्शन इज फॉर द वर्क, फॉर देयर डिसिप्लिन, फॉर देयर बिहेवियर, नॉट फॉर माय पीस ऑफ माइंड। माय पीस ऑफ माइंड नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। मैं मालिक बन के फिर बाहर मालिक बनूं। जब मैं गुलाम हूं तो मैं मन का भी गुलाम हूं। पहले मैं मन का गुलाम हो गया तो मैं उनका गुलाम हो गया कि तुम मेरी स्थिति को कंट्रोल करते हो, तो फिर मेरी जीवन कैसी हो गई? दैट्स अ स्लेव, स्लेव टू पीपल्स बिहेवियर।
0: पहले स्लेव टू योरसेल्फ भी तो
1: हो गए। जो स्लेव टू योरसेल्फ है वही तो फिर स्लेव टू पीपल्स बिहेवियर। तो पहले अपने मन के मालिक, फिर परिस्थिति के मालिक।
0: वेरी नाइस सिस्टर, वेरी नाइस सर। मेरे अभी तो प्रश्न बहुत हैं और बातें बहुत पूछनी हैं, मगर टाइम हो रहा है, तो शैल वी कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट एपिसोड।
1: थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति। थैंक यू सो मच।
2: इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वॉन्ट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, राइट टू अस एट

0: मोडी नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साला तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यू आर लिसनिंग रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। रेडियो हांजी स्टे ट्यून्ड।
4: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी। हांजी
1: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
0: रेडियो हांजी 1674 AM 24

0: यो हाँ जी 1674।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।
5: हाँ जी, मैं हूँ एक और, आप मुझे सुन रहे हैं।

0: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहार।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।